श्री साई राम, भगवान, बाय योर इनफाइनाइट ग्रेस वी द यूथ ऑफ बिहार एंड झारखंड हैव गैदर्ड हियर इन योर डिवाइन प्रेजेंस टू ऑफर दिस गार्लेंड ऑफ सॉन्ग्स एट थाई लोटस फीट. ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ. दिस ऑफरिंग सत्य के पथ पे जो चलता है एम्फसाइजेस द ग्रेटनेस ऑफ सत्य. एडहरेंस टू ट्रूथ अलोन मेक्स लाइफ इजी एंड गिव्स पीस ऑफ माइंड. साई ऑलवेज प्रोटेक्ट्स दोज हु फियरलेसली फॉलो द ट्रूथ.

जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी. मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन. वी आर ग्रेटफुल टू बी बॉर्न इन द सीक्रेट लैंड ऑफ भारत, विच इज त्याग भूमि, कर्म भूमि, योग भूमि. वयम अत्र संजाता डिस्क्राइब्स द ग्लोरी ऑफ भारत.

0: खासदार को चाहे तो ताज पहना दे, वो खासदार को चाहे
1: तो ताज पहना दे,
0: वो हर सुबह मौसम में एक वकील आ दे।

0: मेरे घुटे हुए अरमानों को एक बरकत दी।
1: कौन है जिसने मुफलिसी मुझसे छिना कर मुझे आबाद किया।

0: खासदार को चाहे तो ताज पहना दे, वो खासदार को चाहे तो ताज पहना दे, वो खासदार को चाहे
1: तो ताज पहना दे,
0: वो अष्टभार भोजन में एक फुर्ती ला दे। जो भटकते हैं, जो भटकते हैं नहीं पाते रास्ता कोई, उन्हें एक इशारे से जरा गौर कीजिए, उन्हें एक इशारे दे, उन्हें
2: तो सुनिए ना।

0: मेरे घुटे हुए अरमानों को एक बरकत दी।
1: कौन है जिसने मुफलिसी मुझसे छिनाकर मुझे आबाद किया।

0: जी सुनिए,
1: सबका परवरदिगार है साईं, तुम हम सब बेसहारों का यार है साईं, तुम मोहब्बत का नाम सुनते हो